0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

0: म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज आपकी आवाज
1: गजल पेशे खिदमत है हसरत तुम्हानी की।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पर दी गई है, जो थके थके से तो हौसले

0: system that is love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: अलिफ ला

0: उसका जो है ना असल चेहरा वो दुनिया को दिखाएंगे कि ये जमहूरियत के नाम पे वहां पे जो उसने एक दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया हुआ है, हमारे मजलूम जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, हमारी माए बहने उन पे सितम कर जुल्म सितम कर रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो हम इन जो जमहूरियत के अलमबरदार हैं, इंसानियत को के, ह्यूमन राइट्स के, इन ममालों को हम यही बार बार अपील करते हैं कि खुदा रा इस जुल्म को रोकें, उस इंडिया को इस चीज से मना करें कि वहां पे इंसानों के साथ वो ऐसा जुल्म ना करें। और इंशाल्लाह हम दुनिया भर में जहां जहां भी हमारे कश्मीरी बसते हैं तो वो जो अपने माओ बहनों बुजुर्गों के लिए आवाज उठाते हैं, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब वो मकबूजा कश्मीर भी आजाद होगा। और हमारा तो एक ही नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमारा तो एक पाकिस्तान के साथ जो एक लाजवाब रिश्ता है उस पे हम इंशाल्लाह कार बांधे, और यही हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हम ऐसी एक ताकत बने कि दुनिया में जहां भी दहशतगर्दी हो उसके खिलाफ हम यकजा और एक आवाज होकर हम उस दहशतगर्दी और बदअमनी का सामना जो हमारे अभी दुनिया में हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं और इसको खत्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे
1: भरपूर कोशिश
0: इंशाल्लाह।
1: करें। राय साहब, आप तो हुकूमत बन गई, मुकम्मल हो गई, हर चीज़ पार्लियामेंट का इजलास भी हो गया, तो आपकी हुकूमत ने, नून की हुकूमत ने अभी बड़े पैकेज का ऐलान किया है, तो क्या ये अब कश्मीर कमेटी वाले जो है वो अपने मुतालबात जो है वो समझते हैं, उनके मंजूर हो गए हैं?
0: इंशाल्लाह जी, हमारी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है ना, हमारी हुकूमत ने, हमारे वजीर आजम साहब ने भी, सदर साहब ने भी यही कहा है, और उनके साथ फिल फॉर हम मुज़ाकरात करेंगे, उनके साथ बैठेंगे और हर मसले का हल जो है ना वो बातचीत से ही मुमकिन होता है। ये किसी के साथ तशद्दुद करना, किसी के साथ जुल्म करना और ताकत से किसी चीज को मनवाना ये मुमकिन नहीं होता। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि उस एक्शन कमेटी के साथ हमारी जो हुकूमती टीम है वो मुज़ाकरात करेगी, वो भी हमारे भाई हैं। देखें कि एक जान का जो नुकसान है ना, वो चाहे किसी तरफ से, हमारी लॉ एंड फोर्सेस का जो नुकसान हुआ है, हमारे उन वहां पे जो धरना दे के बैठे हुए हैं एक्शन कमेटी के, वहां से जो अगर नुकसान हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है जानों का, हमें दिली तौर पर उसका अफसोस है। और इंशाल्लाह ये उसमें मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि उस कमेटी के जो मुतालबात थे वो कोई ऐसे नहीं थे कि वो उनको ना माना जाए, वो माने भी गए और उनकी अच्छी बातचीत भी चाह रही थी। इसमें कुछ ऐसे अनासर शामिल हो गए जो उन्होंने उसको हवा दे के और इस फोर्सेस पे हमले किए, और हमारे नौजवान जो फोर्सेस के जो वहां पे तैनात थे उनकी जानों का ज़िया हुआ, ये भी अफसोसनाक बात थी। और इंशाल्लाह उन अनासर को हम जल्द कटहरे में लाएंगे जिन्होंने ऐसी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां शुरू की, और मजबूरन हमारी पुलिस और रेंजर ने फिर आगे से अपने दफा के लिए या उसको इस चीज से रोकने के लिए वो तरीका इख्तियार किया जिससे जानों का नुकसान हुआ। तो ये लम्हा फिक्रिया है, इंशाल्लाह हमारी हुकूमत की सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि वो
1: तो राय साहब,
0: इस
1: एक
0: चीज
1: तरफ
0: को
1: तो शुहदा का मजाक उड़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है वो लीडरान के लिए तहरीक चलाई जा रही है, और इस्लामाबाद आकर सोमनाथ का मंदिर का लकब दिया गया और उसको गिराया जाएगा, क्या कहेंगे?
0: सर, यही तो बदकिस्मती है कि ये जो हमारी पाकिस्तान की एक सियासी जमात तो ऐसा नहीं कर सकती। मैं कहता हूं कि इस जो तहरीक इंसाफ है पाकिस्तान, ये इसने जो रास्ता अख्तियार किया है ना, ये अमन का रास्ता नहीं है। उन्होंने जैसे ये ऐलान किए सोमनाथ के मंदिर वगैरह, ये किसी तरह भी जायज नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये ना समझ लोग हैं। उन्होंने अभी जो हुकूमती रिट है ना, उसका सामना नहीं किया। ये आपस के जो झगड़े होते हैं उन उनमें और हुकूमत के साथ जो ऐसे मामलात होते हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये ऐसे ही बातें करना, ऐसे इंतशार फैलाना, आवाम को उसमें इंतशार अंग्रेजी में शामिल करना, ये बहुत ही खतरनाक है। और पाकिस्तान इसका मुतमल नहीं हो सकता कि हमारे खित्ते में जो हालात चल रहे हैं, देखें ईरान अमेरिका की जो वहां पे जंग हो रही है, बाकी ममालिक उसमें शामिल हो गए हैं, और इस मौके पर ऐसी बातें करना, मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाना, वो किसी सूरत काबिले कबूल नहीं है। और मेरा तो यही इंशाल्लाह जो ख्याल है, जो सोच है, ये समझ आए तो बेहतर है, नहीं तो मेरा ख्याल है फिर इनके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा होंगी। ये इमरान खान को भी सोचना चाहिए। और वो तो जाहिर है उसकी अपने जो किए हुए जुर्म है उनकी वो तो सजा भुगत रहा है। ये किसी की इंतकामी कार्रवाई नहीं है। उसने जो हुकूमत में रह के जो भी ऐसे गलत काम किए वो उसकी सजा भुगत रहा है। वो उनका मामला और अदालतों का मामला है, ये किसी सियासी इंतकाम का शिकार नहीं है। ये जो मामले हैं वो भी अदालतों में उसके जो मुकदमात हैं वो उसमें है, और उनका वो सामना करेगा, उसको इंसाफ मिलेगा।
1: राय साहब, इंसाफ की बातें कर रहे हैं कि हम जिन ममालिक में रहते हैं, ईयू के ममालिक में रहते हैं, राय साहब, या माशाल्लाह सारी जमातें, सियासी जमातों में सारे ही खुद कफील हैं। दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, सारी पाकिस्तान की सियासी जमातें मौजूद हैं। लेकिन जहां हम लोग रहते हैं, जहां हमको सहूलियात मिलती हैं, अस्पतालों की सहूलियात, तालीम की सहूलियात और दीगर जो सहूलियात हमें मिलती हैं, उन ममालिक की सियासी जमातों में हम हिस्सा नहीं लेते, लेकिन जहाँ हमारा अमल दखल नहीं होता वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये तजाद क्यों है?
0: राय साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि ये कह लें कि अभी लाशौरी में ऐसे हो रहा है कि हमें चाहिए कि यहाँ की मकामी सियासत में हमारे यहाँ पे अभी कह लें कि दूसरी तीसरी नस्ल जा रही है, तो इस मकामी सियासत में भी हिस्सा लें। यहाँ के जो अच्छे काम है, अच्छी हुकूमत की जो मंसूबे होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, उनको लेके अपने मुल्क में भी हमारा देखें। पाकिस्तान से हमारा, मैं बसीयत कश्मीरी, पाकिस्तान से तो मेरा एक ऐसा रिश्ता है कि वो हम जब भी कहते हैं कि हम कश्मीर या अपने इलाके में मीरपुर से तल्लुक रखता हूँ, वहां का नाम नहीं लेता। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान जाना है। और उस सियासत में भी जाकर ये चीजें शामिल कराएं, और जो जो अदारे हैं, जो जो सियासी जमातें हैं, उनमें ये चीजें वहां पर भी इंट्रोड्यूस करें कि हमारे मुल्क में जो हालात हैं मौजूदा, वो लोगों की अभी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये कहता हूँ कि आगे से बेहतर हो रही है। महंगाई, ये जो महंगाई का अभी जो दौर चल रहा है, ये पूरी दुनिया में ऐसे है। यहाँ यूरोप में आप डेनमार्क जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में रह रहे हैं, आपको भी महसूस हो रहा होगा कि कितनी महंगाई यहाँ पे हो गई है। वहां पे भी महंगाई जरूर है, इसमें नो डाउट कि हम कहें कि महंगाई नहीं है, महंगाई है, मुश्किल है हालात। फिर भी इंशाल्लाह हमारी जो मुस्लिम लीग की हुकूमत है, हमारे वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, वो उनकी सारी टीम, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसमें जो तरक्की के काम हो रहे हैं, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वहां पर भी जो अभी जो इस दौर में जो उनका ये चल रहा है हुकूमत का, और मैं कहता हूँ कि वो वहां पर तरक्की का हर शोबे में इनकलाब ला रही है। और ये विजन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम का, ये हम उनको क्रेडिट देते हैं कि वहां पे जो तामीर और तरक्की के काम हो रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जब पाए तकमील तक पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान किस बुलंदी पे पहुंच गया है।
1: राय साहब, इसके अलावा आप अपने मुल्क के मुतल्लिक कोई बात करना चाहें, इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत की बात करना चाहें। एक बात सामने आ रही है कि जहाँ जहाँ दुनिया में ओवरसीज़ बसते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला अपने ममालक को भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सियासत में जाकर ये सारे उलझ जाते हैं और उससे जो उनको प्रैक्टिकली फ़ायदा होना चाहिए वो हुकूमतें ओवरसीज़ को फ़ायदा नहीं देती।
0: देखिए जी, इस सिलसिले में भी हमारा हमारी इस हुकूमत का जो एक इकदाम है, मैं उसको बड़े नज़दीक से जानता हूँ। हमारे ओवरसीज में सबसे पहले तो OPF के प्लेटफॉर्म से जो सैयद कमर रजा साहब ने हुकूमत ने उनको ये नॉमिनेट किया है, उन्होंने अपना काम जो वो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा काम है। दूसरे सबसे ज्यादा जो ज्यादा फायदेमंद ओवरसीज के लिए कर रहे हैं वो हमारे जो ओवरसीज के वाइस OPC पंजाब के जो चेयरमैन है बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो भी ओवरसीज के मसाइल हैं, किसी की जायदाद का मामला हो, किसी के बाकी किसी नाजायज कब्जे का कोई मामला हो, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज एक हफ्ता पहले भी उनसे UK में जाके मैंने मुलाकात की है। और वो जो उनका प्लान है वो बहुत अच्छा, ओवरसीज की सहूलत के लिए उनके जो भी मुश्किलात हैं उसके हल के लिए वो 24 घंटे 24 घंटे आप बेशक रात के दिन को किसी वक्त उनका जो नंबर है, उनके मुतलका जो भी उधर लाहौर में उनका ऑफिस है आप रब्ता करें, उनको जो भी मसला मसाइल है उनको बताएं, वो फेल फोर उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है, अदालतें भी बन गई हैं ओवरसीज के लिए, स्पेशल अदालतें बनाई हैं उन्होंने, वहां पे जज बैठा दिए हैं हर जिले में, और ओवरसीज के जो भी मसाइल हैं वो मेरा ख्याल है अभी कह लें कि 1 साल भी उनको नहीं हुआ इस जिम्मेदारी से, और जब ये 4-5 साल मुकम्मल होंगे तो और इंशाल्लाह उसका नतीजा आवाम खुद देखेगी कि ये कितनी बड़ी सहूलत ओवरसीज के लिए इस हुकूमत ने उनको दी हुई है पाकिस्तान में।
1: राय साहब, आपकी बातों से पता चलता है कि इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। आखिर में कोई पैगाम देना चाहें।
0: सर, हम तो कहते हैं कि हम बसियत ओवरसीज अपने मुल्क का सोचें, यहाँ पे जब जिस मुल्क में भी रह रहे हैं उन के कानून का बिल्कुल इत्राम करें, और यहाँ हमने जिंदगी गुजारनी है, हमारी नस्लों ने, ये भी हमारे मुल्क है, ये नहीं कि हम यहाँ पे आर्जी आए हैं और हमने चले जाना है। यहाँ के कानून की पाबंदी करें, यहाँ के लोगों से प्यार मोहब्बत से रहें, पेश आए, उनके भी जो मसले मसाइल हैं यहाँ के, यहाँ पे भी मसले मसाइल होते हैं, जहाँ भी कोई इंसान रहता है तो वो मकामी भी जो मसले मसाइल है उनके साथ भी आप तआमुन करें, और अपने मुल्क में के लिए जहाँ जिस जिस मुल्क से हम वाबस्ता हैं, जिस शहर से वाबस्ता हैं, वो उसका भी ख्याल रखें, और उन लोगों की बेहतरी के लिए जो भी आप काम कर सकते हैं तो वो बिल्कुल करने चाहिए, और अपने लोगों की खुशहाली के लिए और जर मुबादला की शक्ल में अपने मुल्क के लिए आप अपनी खिदमात पेश करें, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे जो भाई पहले की तरह अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला भेज रहे हैं, उसमें दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह अजाफा भी हो रहा है और पाकिस्तान में इस ज़र मुबादला से खुशहाली भी आ रही है।
1: राय साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
0: बहुत शुक्रिया राय साहब। तो मैं आपको एक बार फिर इस चीज का आपको मैं सलाम पेश करता हूँ कि आपने हमें बसीर कश्मीरी हर मौके पर ये आवाज़ हमारी दुनिया के अवानों तक पहुँचाई है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा भी आप ये ऐसे इकदाम करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।
1: सामान्य नाज़रीन, ये थे राजा इश्तियाक साहब जो कि अपनी बात कर रहे थे। सामान्य नाज़रीन, हमारा किसी से मुत्तफिक होना ज़रूर नहीं है, लेकिन हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना। जहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप बेहतरीन जज हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।